लस हे मेहे फेबे मा रंगमाजे आरसीसी दिम गोरा चहरा दिन प्रे रखोर मा नग फारम मा असिम टमाटर की ट्रनेल मा सिंगबे सुर सिंगजेपल मुबा होले सिंगबे सुर मुसम ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सेगो होई रोमा हुजुरी मी दिम फिटिंग सिंगबे अंतरराष्ट्रीय स्तर ला जम्मनु सामान मा होलसेल मूल्यारी यंगबा असिम दिम सम्मन बोरबारी ध्वनिला सुविधा न मुबा क्रंगुर्नाले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 02-525-470 असेम 98-511-87-882 फोन सिङजिम सेगो है रोमा।

लसहे मेहबे फेबेमा रंगमाझे आरसीसी दिम गोरा चहरा दिन प्रे रखोरमा नग फारममा असिम टमाटार की टनेलमा सिंगबै सुर सिंगजेपल मुबा होले सिंगबै सुर मुसम ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सेगो होइ रोमा हुजुरिमी टिम फिटिङ सिंगबै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरला जम्मनु सामानमा होलसेल मूल्यारी यङबा असेम दिम सम्मन बोरबरी ढुवानीला सुविधा न मुबा क्रङ्युर्नाले बजार कोर्ब आहिन है रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 010-520-470 असेम 98511-87-882 फोन सिङ्जिम सेगो है रोमा।

0: सन्तुष्टि नै हाम्रो सन्तुष्टि हो।
1: लस्तो है मेहबे फेबेमा रङमाझे आरसीसी दिम गोरा चहर दिन प्रे रखोरमा नग फारममा असिम चमटार कि ट्रनेलमा सिङबै सुर सिङजेपल मुबा होले सिङबै सुर मुसम ओम टंके सुर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सेगो है रोमा हुजुरिमी दिम फिटिङ सिङबै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई जम्मनु सामानमा होलसेल मूल्यारी यङबा असेम दिम सम्मन बोरबरी ढुवानीला सुविधा न मुबा क्रङयुर्नाले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 010-520-470 असेम 98-511-87-882 फोन सिङ दिम सेगो है रोमा।

0: सामाजिक रूपांतरण का लागी यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
1: अहिले बेलुकी को 7:30 बजे को था। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।